0: Ashi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ये तुम्हारे लिए एक टैरो डेक। मैं जानता हूँ कि तुम सालों से टैरो पढ़ रही हो, बट आई थॉट ये एक अनयूजुअल डेक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। दिस इज अ प्रेजेंट आई गॉट ऑन अ फर्स्ट डेट विद अ गाय हु आई मेट ऑन अ डेटिंग ऐप। हमने पिछले 2-3 हफ्ते काफी सारी बातें की एंड फाइनली वी मेट लास्ट नाइट। और सबसे पहले मिलते ही उसने अपने बैग में से ये खूबसूरत सा अमेजिंग टैरो सेट निकाला, विच ही हैड ऑर्डर्ड ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले। एंड ही वाज लाइक, मैं जानता था हमारी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू दैट यू रियली लाइक रीडिंग टैरो, एंड आई थॉट कि पहली बार मिल रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग लेकर आता हूँ, समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, ब्रिंग योर हार्ट सम जॉय। एंड ट्रस्ट मी, ये पहली बार है इन माई लाइफ वेयर आई थॉट टू माई सेल्फ कि वेदर और नॉट आई एंड अप डेटिंग दिस गाय, ये जिंदगी भर मेरा दोस्त जरूर रहेगा। और इसकी वजह से आपके लिए प्रो टिप ये है, द नेक्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग अ फर्स्ट डेट, छोटा सा ही सही, मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रेजेंट फॉर द पर्सन दैट यू आर मीटिंग, बिकॉज उसका इम्पैक्ट ना मैं आपको बयान ही कर सकती हूँ। इट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू लिव थ्रू, वेदर यू आर गिविंग इट और रिसीविंग इट, टू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज। गिफ्ट्स की तो यार बात ही कुछ और है। ऑन दैट नोट, व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल गिफ्ट जो जिंदगी में आज तक आपको कभी मिला है? एंड टू टेल मी अबाउट इट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Murga, murga. La fiesta la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बहुत ही ज्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय मैम, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स जस्ट सो स्कैरी. आई डोंट
3: सो ग्लैड आपने कॉल किया.
2: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते हैं. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे? बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
3: मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी. हम लोग जिम में मिले थे. हम लोगों की थोड़ी केमिस्ट्री बन गई, काफी टाइम बातें आते हुई और मुझे लगा कि दैट शी इज सीरियस. कॉज उसने मुझसे 3-4 बार पूछा था, तुम कभी आगे रहोगे क्या? मैंने कहा हाँ. तो मैं थोड़ा सीरियस हो रहा था. हमारी जो इंस्टा पे चैट थी कुछ वो पकड़ ली उसके फादर ने. तो नेक्स्ट डे शी वाज सो क्राइंग. मेरे को 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे. कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं. फिर जब बात हुई हम लोग मिले, हम उसकी कार में थे. थोड़ा मूवमेंट बन गया था और सडनली वहां पे पुलिस आ गई थी. वो मतलब कोई आके आगे ऐसे कार के आगे खड़ा हो गया कि बाहर आओ. और मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला और मैं, वो हमारे पीछे भागे हैं और मैं बिना पहन के कार चला. सो दैट मोमेंट वाज सो एम्बैरेसिंग. अब मैं किसी को ऐसे बताता और मतलब मेरे फ्रेंड से कभी शेयर करूं तो एवरीवन इज लाइक यार वो तेरे से 5 साल बड़ी थी, यू आर जस्ट अ किड.
2: तो आप कितने साल के हो?
3: आई एम जस्ट 20 years old.
2: ओह यू आर 20 एंड शी इज 25, सो क्लियरली शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना?
3: या
2: मिस्ट्री कॉलर, डोंट यू थिंक मुझे आपको रोशिफाई कर देना चाहिए?
3: यस
2: देन यू गो माय डार्लिंग.
0: यू've been रोशिफाइड.
2: आपसे बात करके बहुत मजे आए. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. वी विल गेट टॉकिंग एंड व्हाइल यू डू दैट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
3: शशि वो मैनहट्टन है।
2: मैनहट्टन।
4: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
3: टैन मतलब वो धूप की छाप।

मेरे हिसाब से ना द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर दोज जिसमें एक कपल वर्कशॉप करते हैं. यू नो कि आदमी वर्क करता है और लड़की शॉप करती है. दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप रिलेशनशिप इज सुपर सक्सेसफुल. आई एम जस्ट किडिंग. बट आज मैंने सोचा कि आपसे पूछती हूँ कि इफ़ यू हैव एवर बीन इन अ रिलेशनशिप, आपके हिसाब से व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स अ रिलेशनशिप रियली वर्क. मेरे हिसाब से इट्स ग्रेट कम्युनिकेशन. छोटी सी मिसकम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग जस्ट गोज डाउन हिल. आई रिमेंबर वेरी रिसेंटली मेरी बेस्टी के साथ ऐसे हुआ. शी वेंट विद हर बॉयफ्रेंड टू गोवा और उन दोनों की एक बहुत अच्छी कॉमन फ्रेंड थी. तो अब बॉयफ्रेंड डिसाइडेड टू गो स्विमिंग विद द अच्छी कॉमन फ्रेंड एंड माई बेस्टी वॉज लाइक कि नहीं यार मैं पीछे रुक कर किताब पढ़ती हूँ. एंड द बॉयफ्रेंड सेड कि हाँ ठीक है ओके ओके ओके. ना सोचो एक छोटी सी चीज पर्सपेक्टिव का डिफरेंस. बॉयफ्रेंड सोच रहा है कि मैं इसे वो करने दे रहा हूँ जो ये करना चाहती है, जबरदस्ती स्विमिंग नहीं लेके जा रहा. और मेरी बेस्टी को लग रहा है कि भाई ये अकेले स्विमिंग चला गया इसके साथ. आई होप दे बोथ ड्राउन एंड डाई. सो नाउ यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस राइट. तो आपके हिसाब से व्हाट इज इट दैट मेक्स अ रिलेशनशिप टिक, टेल मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट. Yeah.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पहले ही बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
0: Roshi के DM से
2: सानिया ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्विस्टेड मैसेज लिखकर भेजा एंड शी सेड मुझे इसका आंसर आप खुद ही बता दो, आई कांट टॉक अबाउट इट, आई विल स्टार्ट क्राइंग। द थिंग इज, सानिया को एक बंदा मिला एंड दे बोथ हैव बीन डेटिंग फॉर 6 मंथ्स, लेकिन वो जानती है कि अगले 2 महीने के बाद वो बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। सानिया दिल्ली में खुश है अपनी नौकरी में, शी डजंट वांट टू रिलोकेट टू ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं ट्राई करना चाहते हैं बिकॉज शी इज़ लाइक, हम दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई कर लिया है अपनी ज़िंदगी में पहले एंड वी नो दैट इट डजंट वर्क आउट। सो हमारा रिलेशनशिप एक जेन्युइन एक्सपायरेशन डेट के साथ आता है, शी सेड, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती है। द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे जैसे हमारा एक्सपायरी डेट पास आते जा रहा है, वैसे वैसे आई फाइंड दैट आई एम फीलिंग सैडर एंड सैडर, एंड यूजुअली बिकॉज मुझे पता है कि वो जाने वाला है, व्हेन वी आर आउट ऑन अ डेट इवन देन आई एम फीलिंग काइंड ऑफ सैड। तो क्या करूँ, 2 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लूँ ताकि मुझे इससे बड़ा हार्ट ब्रेक ना हो, या मैं इस रिलेशनशिप में और 2 महीने रुक जाऊँ सो दैट आई कैन इन्जॉय व्हाट आई एम ऑलरेडी इन्जॉइंग विद दिस गाय। यू नो व्हाट बेब, है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपकी, बट द ट्रूथ इज़ कि छोटा हार्ट ब्रेक और बड़ा हार्ट ब्रेक कुछ नहीं होता। जब आपका दिल किसी के साथ इन्वॉल्व होता है और वो रिलेशनशिप किसी भी पॉइंट पर ख़त्म होता है, यू डू एंड अप ब्रेकिंग योर हार्ट। और क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सर्टन रिलेशनशिप बना लिया है, वो आप आज ख़त्म करो या 6 महीने के बाद ख़त्म करो या 2 साल के बाद, इट इज़ स्टिल गोइंग टू हर्ट यू द सेम वे। मैं ये भी जानती हूँ दैट टू से कि लिव इन द मोमेंट, इन्जॉय कर लो अगले 2 महीने विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑनेस्टली टू आंसर योर क्वेश्चन, देर इज़ नो आंसर टू योर क्वेश्चन। आप जिस सिचुएशन में हो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू गाइज हैव बीन कॉन्शियस अबाउट चूजिंग दिस फॉर yourselves। आपने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, जब तक इकट्ठे हैं तब तक इकट्ठे हैं। वंस ही डज लीव, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हार्ट ब्रेक और वैक्यूम होगा, दैट इज़ ट्रू, बट ट्राई एंड मेक एज मैनी मेमोरीज एज यू कैन। एंड हु नोज, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाकर ही माइट ऑल्सो रियलाइज कि हम शायद इमेच्योर थे इन थिंकिंग दैट हर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। मे बी यू गाइज विल चेंज योर माइंड अबाउट इट, बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ स्मॉल वे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी ब्रेकअप कर दिया तो आपको तकलीफ कम होगी, तकलीफ आपको तब भी होगी। तो माई सजेशन इज, वाइल यू टू आर टुगेदर, मेक द मोस्ट ऑफ इट। और उसके बाद अगर आपको एक ब्रोशी की ज़रूरत हुई, मैं हूँ ना आपके साथ, एंड आई प्रॉमिस टू नेवर लीव यू नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड आई एम। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है RochiE, सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vispa, la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi, Shivani.
2: Hi.
3: Hi, Shivani. Congratulations. Mubarak ho. Gaadi khareed li.
2: Thank you very much. Aap kaun bol rahe hain?
3: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

장정의시여신종료

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बहुत ही ज्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय मैम, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स जस्ट सो स्कैरी. आई डोंट
3: सो ग्लैड आपने कॉल किया.
2: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते हैं. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे? बताओ आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
3: मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी. हम लोग जिम में मिले थे. हम लोगों की थोड़ी केमिस्ट्री बन गई, काफी टाइम बातें आते हुई और मुझे लगा कि दैट शी इज सीरियस. कॉज उसने मुझसे 3-4 बार पूछा था, तुम कभी आगे रहोगे क्या? मैंने कहा हाँ. तो मैं थोड़ा सीरियस हो रहा था. हमारी जो इंस्टा पे चैट थी कुछ वो पकड़ ली उसके फादर ने. तो नेक्स्ट डे शी वाज सो क्राइंग. मेरे को 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे. कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं. फिर जब बात हुई हम लोग मिले, हम उसकी कार में थे. थोड़ा मूवमेंट बन गया था और सडनली वहाँ पे पुलिस आ गई थी. वो मतलब कोई आके आगे ऐसे कार के आगे खड़ा हो गया कि बाहर आओ. और मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला और मैं, वो हमारे पीछे भागे हैं और मैं बिना बैंक के कार चला. सो दैट मोमेंट वाज सो एम्बैरेसिंग. अब मैं किसी को ऐसे बताता मतलब मेरे फ्रेंड्स से कभी शेयर करूं तो एवरीवन इज लाइक यार वो तेरे से 5 साल बड़ी थी, यू आर जस्ट अ किड.
2: तो आप कितने साल के हो?
3: आई एम जस्ट 20 years old.
2: ओह यू आर 20 एंड शी इज 25, सो क्लियरली शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना?
3: या
2: मिस्ट्री कॉलर, डोंट यू थिंक मुझे आपको रोशिफाई कर देना चाहिए?
3: यस
2: देन यू गो माय डार्लिंग.
0: यू've been रोशिफाइड.
2: आपसे बात करके बहुत मजे आए. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है मेरे पास है उसे सुनने के लिए, नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. वी विल गेट टॉकिंग एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी एग्जिस्टेंस की वजह से आपको लगता है कि जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा गुलजार है. अब फॉर इंस्टेंस देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन ऑफिस. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन उसकी पता है खास बात क्या है. मुझे उसे बताना नहीं पड़ता है कि आज मेरा मूड कैसा है. मेरी आंखें देखता है और समझ जाता है कि आज मैं खुश हूँ दुखी हूँ मेरे दिमाग में कोई प्रेशर है एंग्जाइटी है. और देखते ही विल नो व्हाट आई नीड. वो एक चॉकलेट आइसक्रीम है एक गर्म चाय की प्याली है एक अच्छा सा गाना है या फिर बस जस्ट अब पैकअप कर और घर जा. और जिंदगी में अगर एक भी ऐसा दोस्त हो ना यू नो दैट योर लाइफ इज मेड. शायद कहीं ना कहीं भगवान ने आपको स्पेशल वन चूज कर ही लिया है. और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है आई रियली वॉन्ट टू नो दिस स्टोरी. यू नो वाई? क्योंकि हम जितनी ये प्यार की बातें करेंगे इस दुनिया में हम प्यार को और मल्टीप्लाई ही करेंगे. एंड टू टेल मी योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट एक चीज जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी वो ये है कि जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय शिवानी
1: हाय
2: हाय शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली
1: हाँ थैंक यू वेरी मच आप कौन बोल रहे हैं
2: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया अरे ग्रेट मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार
2: ग्रेट माइलेज मुझे बताओगे कितना है
1: ठीक ठाक है 13-14 के करीब पड़ जाता है आप कौन बोल रहे हैं
2: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में
1: चला रही हूँ काफी दिन हो गए मेरे को पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई
2: ओके शिवानी आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ शिवानी आप मुझे नहीं जानती है अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा
1: आपको लेनी है क्या
2: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा है ना
1: हाँ?
2: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है तो कोई नई गाड़ी मुझे
1: वन सेकेंड
2: चुप बैठो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ज़ोबी शट अप मैं बात कर रहा हूँ उनसे अभी कर लेना शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है इसका हुआ नहीं है नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है इसको करना है आप ले आएंगे वो टायर के पास
1: नहीं अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना खरीद नहीं सकता मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका ये कब से रोके हुए वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले
2: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी एक टायर पे करेगा
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी
1: हेलो
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा अच्छा मेरी बात
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं खुद ही कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज
2: अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन काटना शिवानी मेरी बात सुनो
1: नहीं नहीं
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मेरी बात सुन लो प्लीज अतुल ने मुझे नंबर दिया था ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है कंग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ली है यार जुबी शरा वो गाड़ी ला रही है टायर पे कर लेना
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये लिखा है मुंशी अमीरुल्ला तस्लीम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। थोड़ा सैड हो गया मामला, रोमांटिक वाला सुनते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। कैसर उल जाफरी ने ये लिखा है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
3: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: सामान
4: उठवा
3: क्या कर रहा
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उमराव जान फिल्म बनने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी दिक्कतें। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत जीवन में क्या होती है? पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत थी इस फिल्म के बनने में। कितनी बार ऐसा हुआ कि फिल्म बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके फिल्म बना दी गई। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स में ना रेखा ने जो कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी पहनी है, वो उनकी खुद की है। चलिए, समवेयर इट पेड ऑफ, फिल्म को नेशनल अवार्ड्स मिल गए। और आपको मिल रही है यहाँ पे वही पुरानी दुरानी एक चीज, वो है ब्रेक। बट इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक, ऑफ कोर्स गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋರೆಗನ.

0: घोड़ा चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर, एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना, गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम

0: हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार सिर्फ एक अमेजिंग एक्टर ही नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंसान भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। दादा मुनि बहुत काइंड हार्टेड थे, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे फिल्म टेक्नीशियंस की उन्होंने मदद की है। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट भी फेमस है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टेक्नीशियन को चोट लग गई थी, तब दादा मुनि मेड श्योर कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद ही शूटिंग वापस से शुरू हो। अशोक कुमार साहब ने बहुत से नए टैलेंट को चांसेस दिए, उनके साथ काम किया, उनकी हेल्प की, उनको गाइडेंस दी, इंक्लूडिंग हिज यंगर ब्रदर्स अनूप कुमार एंड किशोर कुमार। पर उन भाइयों की फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो साहब चलती का नाम गाड़ी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: बाजू।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

जो प्यार से हर पल प्यार करे, वो शायर आशिक आवारा, मैं गंगा तट का बंजारा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लाइंस लिखी थी अनजान साहब ने, जिनका असली नाम लालजी पांडे था, जो बनारस के थे। और उनकी पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी कविताओं की कलेक्शन की एक बुक, जिसका नाम है गंगा तट का बंजारा, इसका लॉन्च हुआ था 1993 में और लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी में अनजान साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनके बहुत सुपरहिट गाने अनजान साहब ने लिखे हैं। लेकिन इतने हिट गाने लिखने के बाद भी अनजान साहब को एक मलाल रहा कि उनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। यार देखिए, वैसे कलाकार का काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन। थोड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो ऐसा फील करते थे, मतलब इतने सुपरहिट पे हिट गाने आप लिखो, अवार्ड भी नहीं दो, जान ले लो मतलब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

लाइफ में सोचते हैं क्या और क्या हो जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1987 की फिल्म इजाजत, इसमें ओरिजिनली नसीरुद्दीन शाह साहब के रोल के लिए संजीव कुमार को साइन किया गया था और अनुराधा पटेल वाले रोल के लिए स्मिता पाटिल को, लेकिन जब तक ये फिल्म बननी शुरू हुई ये दोनों एक्टर्स नहीं रहे। फिर नए सिरे से नए एक्टर्स को साइन किया गया। लाइफ और वक्त का कोई भरोसा नहीं है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट्स, सुनते हैं यहाँ पर मिर्ची पर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiat bala burka. Mirchi, burka.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शराब, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक। पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना है 1978 की फिल्म दिल से मिले दिल का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ ज्यादा याद रखने वाली ये फिल्म है नहीं, लेकिन इसमें जो एक्ट्रेस थी ना श्यामली, ये कुछ फिल्मों में आई थी, कुछ हॉरर फिल्मों में भी आई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए इनको किशोर कुमार ने रेकमेंड किया था। किशोर कुमार जिस बैंक के कस्टमर थे, उसी बैंक में श्यामली के फादर काम करते थे, तो किसी तरह से किशोर कुमार ने इन्हें देखा, इनसे मिले और इनको इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया। इसी बात पर किशोर कुमार का एक और गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कादर खान साहब एक सिविल इंजीनियर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पढ़ाई के बाद उनकी जॉब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी, जहाँ से उन्हें एक महीने बाद निकाल दिया गया। हताश निराश होकर वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने ही कॉलेज के सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, फकी साहब उनका नाम है, वो ऊपर जा रहे थे, मुझे देखा, बताया खान क्या सर मेरा जॉब छूट गया। ठीक है, इंजीनियर्स को जॉब वालों को ऐसा होता है, तो ऐसा मुंह नहीं बनाने का। परसों ने काम कर, एक टीचर 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला, वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए, तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूंगा सर। तो टीचर बन गया। अब 2 महीने के लिए टीचर बना, वो उन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर बना जिनमें मैं खुद फेल हुआ था, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत बोर सब्जेक्ट है सर, बहुत खुश्क, और वो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती है ऐसी, साल में 15, कोई बनाता नहीं था। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मजा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा, और सर ऐसा पढ़ाने लगा, 1 हफ्ते बाद मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया।
0: शायद इसीलिए जिन रोल्स में ऐसे टीचिंग प्रीचिंग होती थी ना, कादर खान साहब बहुत अच्छे से निभाते थे। याद है मुकद्दर का सिकंदर में कैसे एक रोते हुए बच्चे को उन्होंने हंसना सिखाया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

द कल्ट क्लासिक आइकॉनिक फिल्म गाइड के गाने पहले हसरत जयपुरी साहब लिखने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर किसी गाने को लेकर उनका और डायरेक्टर विजय आनंद का कोई आर्गुमेंट हो गया, कोई लाइन विजय आनंद साहब को पसंद नहीं आई उनकी, और उस बात पे कुछ डिस्कशन हो गया जो आर्गुमेंट में बदल गया, और तब हसरत जयपुरी साहब ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनकी जगह पे फिर शैलेंद्र साहब को लाया गया और उन्होंने फिर इस फिल्म के गाने लिखे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सो रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी जो शुरुआत में मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग लगी, लेकिन बाय द टाइम फिल्म एंडेड आई जस्ट लव द फिल्म। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म है 1978 की फिल्म नौकरी, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। सो ये 1978 वाली इज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, और अब तक तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्में मुझे कितनी पसंद है। इसके बारे में मुझे ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पता था, बट जब देखी तो पता चला कि वाह क्या सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट पे काफी फिल्में बन चुकी हैं, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी। सो बेसिकली इसमें राजेश खन्ना का जो किरदार है वो अपनी जिंदगी से तंग आके अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, और आफ्टर लाइफ में उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एहसास दिलाता है कि भाई तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। क्योंकि इस फिल्म को प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट किया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनरिलेटेबल, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, बट ओवरऑल द सब्जेक्ट इज वेरी नाइस। कभी कोई थॉटफुल फिलोसॉफिकल मूवी देखने का मूड हो तो ये वाली जरूर देखना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La fiesta la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आज सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने?
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात.
3: हाँ सर.
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Innovate के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yeah पकड़
2: पुरानी जीन्स विद चारू only

1969 की फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना का जो ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाला रगड़ लुक था ना, वो काफी पसंद किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये लुक कोई स्पेशली इस फिल्म के लिए नहीं उनका सोचा गया था, ये तो ऐसे इत्तफाकन हो गया था। बिकॉज उस टाइम पे राजेश खन्ना इस फिल्म की और इत्तफाक नाम की फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे। उस फिल्म का जिस तरह का सब्जेक्ट था, इनका लुक वैसा होना था, ऐसा दाढ़ी वाला। तो दोनों फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे, दाढ़ी लिए फिर रहे थे, तो इसी से काम चला लिया गया। वैसे दो रास्ते में भी वो ऐसे हैरान परेशान से घूमते रहते हैं, तो उस तरह का लुक उनको सूट हो गया था। चलिए आपको भी एक लुक बहुत सूट करता है, वो मुस्कान वाला लुक है। मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: लेट 60s में जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे, वीकडेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ वीकेंड्स में बॉम्बे जाते थे फिल्मों में काम ढूंढने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसी टू फ्रो में उनको ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके लिए उनको कितनी पेमेंट मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में अस्टानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, तू पुणे से आया है? हाँ सर। क्या किराया है? मैंने कहा डेक्कन क्वीन में आया। कितना? मैंने कहा 6 रुपए। 6 आने नहीं ना, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो उन्होंने कहीं बैठे नहीं थे। मैंने कहा नहीं सर, बहुत पता नहीं मुझे। अरे पता बुलाया प्रोडक्शन वाला, इधर आओ, डेक्कन क्वीन का पता करो, फर्स्ट क्लास कितने का है। गुड्डी का रोल 2 दिन का, उसके लिए मुझे देने से पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा सर 21 रुपीज दे दो। 21 रुपीज और जेब में लिफा डाल दिया। मैंने खोला ही नहीं, जाके जब ट्रेन चल पड़ी बाथरूम में जाके खोला तो 250 रुपए। 250 रुपए की कीमत थी और ऋषिकेश मुखर्जी दे रहे पैसे, वो तो लेते थे, देता कहाँ से। बट लकी, आई एम वेरी लकी।
0: वेल, यहाँ से शुरुआत हुई और इसके बाद तो आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ 12-13 फिल्मों में अस्टानी साहब ने काम किया होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

क्या ही माइंड ब्लोइंग गाना है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसमें मोहम्मद रफी साहब की तो मेन आवाज है। वो जो बच्चे वाली आवाज है वो आपको पता है ना, वो सुषमा श्रेष्ठ यानी कि पूर्णिमा श्रेष्ठ यानी कि 90s की वो जो पॉपुलर सिंगर पूर्णिमा है उनकी है। 70s में ये बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड सिंगर थी, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं। मतलब ज्यादातर जो बच्चों की आवाज आपने उस टाइम पे फिल्मों में सुनी है वो इन्हीं की थी, जैसे है ना बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार, अंदाज फिल्म का जो गाना है उसमें, फिर तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो वाला गाना जो है उसमें, ऐसे कई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba, la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hi, Shivani.
1: Hi.
2: Hi, Shivani. Congratulations. Mubarak ho. Gaadi khareed li.
1: Haan, thank you very much. Aap kaun bol rahe hai?
2: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार।
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता
2: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और हो

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virgua, la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: Hello.
3: Hello. Aap hold karna ek second, bhai sahab. Isko vahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega vahan se. Mat karo usko vahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है?
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

Radio Mitchy, New York. It's hot.

0: पवन, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: As a parent, क्या बच्चों की जिद के आगे हमें हार मान लेना चाहिए?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं भावनात्मक हेर फेर हिंदी में, लेकिन मुझे ये जानना है कि हमने अभी तक बात की है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे से बाहर निकले, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी बच्चे ही आपको रियलाइज ही नहीं होता आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर, आप ऐसा नहीं करोगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, ये आप, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक्सेट्रा। तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए आपको एज ए पेरेंट?
4: हाँ, मना बच्चे कई बार करते हैं, आप देखे छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनको कोई चीज चाहिए ना,
3: हाँ।
4: तो उनको भी पता होता है कि अगर हम रोएंगे चिल्लाएंगे चीखेंगे तो मिल जाएगी,
3: हाँ।
4: सो वो भी क्या कर रहे हैं आपको एक्चुअली इमोशनली मैनिपुलेट ही कर रहे हैं,
3: हाँ।
4: पर उसमें भी फर्म रहना चाहिए,
3: हाँ।
4: क्योंकि अगर आपने एक बार उनके अनुसार कर दिया
3: तो
4: फिर वो बार बार आपके साथ ऐसा करेंगे, इसीलिए पेरेंटिंग में भी वो करना है जो उनके लिए राइट है, पर अगेन हार्श नहीं होना, आखिर तो बच्चे ही है ना, आपको प्यार से समझाना है, 10 बार भी समझाना है, 20 बार भी समझाना है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं देनी है वो उनके नुकसान के लिए तो नहीं देनी है,
3: उसमें नेगोशिएट भी नहीं करना कि अच्छा 4 ले लो 6 मत लो,
4: नहीं, कोई नेगोशिएट नहीं करना है उसमें, कोई नेगोशिएशन नहीं होता, अगर वो चीज गलत है
3: तो गलत है,
4: सी डिपेंड करता है कि कभी कभी वो एक है वो गलत है, और एक है कि अभी वो कोई आइसक्रीम है, अब आपने कुछ ऐसा बनाया कि हफ्ते में एक बार देते हैं, पर अगर आपने 2 बार भी दे दी तो कोई उसका इतना नुकसान नहीं है, इट इज नॉट सच अ बिग डील, सो वहाँ पर इट्स ओके, अगर आप थोड़ा बहुत इतने हार्श नहीं होना होता पेरेंटिंग
3: में। दुनिया में जितने हेल्दी लोग जो ये मुहिम चला रखे हैं वो इस बात से बहुत नाराज होंगे कि आपने कहा कि 2 बार दे दो कुछ नहीं, कुछ तो 1 बार भी नहीं देते।
4: नहीं, मैं समझती हूँ उसमें इतना हार्श होने की जरूरत नहीं होती है, पर कई चीजें रॉन्ग होती है,
3: हाँ, वो उसमें बिल्कुल भी, हाँ, कोई गुंजाइश नहीं,
4: उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगर कोई अनएथिकल चीज है, कोई इलीगल है,
3: तो
4: जिसमें उस बच्चे का फायदा है लेकिन किसी का नुकसान है,
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है अभिनव बिश्त से। वो लिखते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं कर पाता हूँ और हर काम को कल पर टाल देता हूँ, और सुबह उठ नहीं पाता, 11 बजे तक उठता हूँ। मैं क्या करूँ?
3: आप अगर हर बार ऐसा करें, पहले तो जो टाइम टेबल है वो अपनी कैपेसिटी से बनाए। सिर्फ टाइम टेबल नहीं बनाना होता, टाइम टेबल भी अपनी कैपेसिटी से बनाना होता है। दूसरा, रात से शुरू करें।
2: अच्छा,
3: जल्दी सोएं। आप कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लें और आप कितना भी प्लान कर लें, लेकिन अगर आप सोएंगे लेट और आप 11 बजे उठेंगे तो वो टाइम टेबल आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
2: मैं सोच रहा था आप क्या कह रही हैं, सुबह से शुरू होना चाहिए, रात से शुरू करें।
3: हम हमेशा सुबह से ही शुरू करते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर शुरुआत ठीक है तो अंत भी ठीक होगा। लेकिन अब धीरे धीरे हम रियलाइज कर रहे हैं कि शुरुआत भी तभी ठीक होगी
2: जब अंत भी सही हो,
3: जब वो पिछले दिन का अंत ठीक होगा। मतलब इफ यू डोंट स्लीप ऑन टाइम तो अगला दिन ठीक नहीं बीतता है। आप 11 उठेंगे तो 11 उठते ही आपका मन थोड़ा दुखी हो जाएगा,
2: क्या यार फिर लेट उठा मैं,
3: क्योंकि आपने जो भी प्लान किया था 9 to 11 में करने के लिए, 8 to 11 में आप पहले ही पीछे चले गए। तो उतना उमंग नहीं रहता ना, पहले ही मन कहने लगता है कैसे होगा, होगा नहीं होगा, आज फिर हो गया, तो मन को उमंग उत्साह नहीं मिलता। मन और थोड़ा सा उदास, निराश, दिल शिकस्त हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग ठीक होने के लिए पहले रात ठीक होना चाहिए। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें। 2-3 दिन भी अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल पाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। पहले तो जो हम हमेशा कहते हैं

0: और इंक्रीज करते जाए।
1: बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आपको 11 बजे उठने की बजाय 11 बजे सोना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाएं और अचीवेबल गोल्स बनाएं, तो शायद इससे आपको बहुत सहूलियत होगी।
0: देखो, 6 घंटे की नींद तो हर एक को चाहिए ही। अगर आप बिल्कुल भी कोई प्रकार का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही। ग्रेजुअली अगर कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्लीप कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ उतना सोते हैं जितना शरीर को चाहिए। अगर अभी आप कोई भी प्रकार का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते तो मन शरीर से ज्यादा थक जाता है, और जब मन शरीर से ज्यादा थक जाता है
1: तो नींद
0: फिर उसको नींद भी ज्यादा चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बच्चों को उनकी गलती का रियलाइजेशन कराने के लिए हार्श होना जरूरी है क्या?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और किसी की मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं था कि द किड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, लेकिन 17 साल की उम्र में गाड़ी चला रहा था और किसी की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। तो उसके पेरेंट ने उसको डिसाइड किया उसको शील्ड करने के लिए, और उसने गाड़ी छुपा दी, गाड़ी को धुलवा दिया, बच्चे को कहीं और भेज दिया एक्सेट्रा। तो ये गलत है। इस केस में आई अंडरस्टैंड कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इस केसेस में, ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आपको उनको सही मार्गदर्शन देना जरूरी है, वरना वो वही सीखेंगे और आगे भी वही करेंगे।
4: अब ये तो चलो एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन वहीं पर जैसे हम बात कर रहे थे नॉन नेगोशिएबल की, कि वहाँ पर थोड़ा भी, अब जब वो अंडर एज है तो उनको वो चीज देनी नहीं चाहिए, वहीं तो रोकना चाहिए ना। वहां पर हम क्या करते हैं, कोई कहता है एक बार ही, समझो कार ही है, अब 16 साल के 15 साल के आप चला सकते हैं, आप केयरफुली भी चलाएंगे, लेकिन फिर भी वो लॉ के तो अगेंस्ट है ना। अब जो चीज लॉ के अगेंस्ट है वहां आपको ढील नहीं देनी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर श्रेया और विशाल को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नयन लोहार है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं ओवरथिंक करने लगता हूँ और उसके कारण फिर मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। इसे ठीक कैसे करें?
4: ओवरथिंकिंग एक बीमारी है, पर ये कमजोर मन के निशानी है
3: जी।
4: अब चैलेंज तो आएंगे ना लाइफ में। अभी कोई भी छोटा सा चैलेंज है, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, डेडलाइन है, टारगेट है, आपके पास ऑप्शन है, आप किस दिशा में सोचते हैं। तो ओवरथिंक हमेशा क्या होता है, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, या काम को लेकर कैसे होगा, होगा नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। सो आपका मन नेगेटिव सोच रहा है। ओवरथिंकिंग माना आपका मन नेगेटिव सोच रहा है। पहली चीज, अपने मन को समझाएं, चॉइस है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम चाहें तो उसको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोचने की कोशिश तो करें, अपने आप संकल्पों की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएंगे। और दूसरा, जो हम हमेशा कहते हैं कि जो संकल्प है उसका आधार है जो आप सुनते देखते पढ़ते हैं।
3: तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें, वो अच्छी होनी चाहिए।
4: आप थोड़ा दिन भर में अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करेंगे ना, आपका मन अच्छा सोचना शुरू करेगा। आप किसी दिन देख लिया, जब आपने एक अच्छी फिल्म भी देखी है, उसका भी आपके ऊपर एक दिन का इन्फ्लुएंस रहेगा। आप
3: उसी के बारे में बात करते हैं, वो सोचते हैं ऐसा हुआ तो अच्छी चीजें के बारे में ही आप सोचते हैं।
4: उस दिन वो सोच क्यों चलती है, क्योंकि आपने देखा, आज आपने कोई पेट्रियोटिक फिल्म देखी, आपने अपने देशभक्ति की कोई फिल्म देखी, तो आपके अंदर वो उस प्रकार की सोच चलती है, भावना आती है। पर वो भावना कहाँ से आई?
3: क्योंकि आपका सोर्स वो था,
4: क्योंकि आपने कुछ देखा। अब हम क्राइम देख रहे हैं, थ्रिलर देख रहे हैं, आजकल तो वीडियो गेम्स के अंदर भी वायलेंस है, वो सब देख रहे हैं। तो जो देखेंगे वो बनते जाएंगे। What you see is what you will become. Your content will create your character. जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप गलत का बंद कर देंगे दरवाजा, सही सुनना शुरू करेंगे और अपने आप ही वो सोच जो है वो बदलने लगेगी।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कोई कारण से पेरेंट को शायद पता नहीं था, गाड़ी लेके चला गया एक्सेट्रा। अब जब ऐसा किस्सा हो गया तो सबसे पहला पेरेंटल इंस्टिंक्ट आता कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं। कहां बचाऊं ये भी जरूरी है, और कहां सबक सिखाऊं ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो उनको नहीं बचाते तो बहुत लोग बोलते हैं अपने ही बच्चे को नहीं बचा रहे, कैसे बाप है।
4: बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस समय वो अटैचमेंट काम करती है। उस समय डिटैच होना, अपने बच्चे को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाना कि जो भी अब इसकी पनिशमेंट है हम मिल करके उसको फेस करेंगे, इससे भागना नहीं है लेकिन इसको फेस करके इसको क्रॉस करना है, तो वो पेरेंट भी तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना। एक्चुअली अगर वो पेरेंट ही इमोशनली वीक होगा, बच्चा तो देखो डरा हुआ ही होगा। उस बच्चे को स्ट्रेंथ कौन देगा? ये मुझे याद है गांधी जी की ये कहानी हम कई बार सुनते थे। उनका एक दोस्त था जो किसी गलत कार्य में फंस गया, रिश्वत आदि बहुत लेता था, उसके अंदर फंस गया। जब फंस गया और फिर केस बन गया वो चीज, तो उसने गांधी जी को कहा कि आप मेरे लिए लड़ो, मुझे उससे निकालो, पर वो गलत था
3: जब वो बैरिस्टर थे।
4: हाँ, जब वो बैरिस्टर थे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं लड़ सकता, यहाँ तो आप गलत हैं। तो उसने, जैसे आप इमोशनल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं कि आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो मुझे इससे निकाल सकते हैं, आप सोचे फिर समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएंगी, मैं वायदा करता हूँ आगे से नहीं करूंगा ऐसे ऐसे उसने भी कहा। गांधी जी ने कहा कि अभी कोई बात नहीं, अभी जिस समय गलत किया था ना, उस समय आपको एम्बैरेस्ड होना चाहिए था, शर्मिंदगा होना चाहिए था, अभी तो हो गया। अब जो इसकी सजा है, उस सजा आपके लिए वो एक काम करेगी अपने को परिवर्तन करने के लिए। ये एक वो मोड़ बनेगा अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। कर्म करते समय थी। हम शर्मिंदगी कब फेस करते हैं? जब गलत कर लिया।
3: हाँ, जब सजा की बात आती है।
4: सजा की बात आती है। तो उन्होंने कहा पनिशमेंट कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, वो तो रियलाइजेशन की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। पर गांधी जी स्ट्रांग थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को भी क्या किया, वो स्ट्रेंथ दी कि नहीं अभी इसको फेस करो, क्योंकि ये कर्म किया है, फिर गलत करेंगे, फिर किसी रूप में लौट करके आएगा। पर हर पेरेंट इतना स्ट्रांग हो और अपने बच्चे को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाए, जरूरी तो वही है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और 7 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ता है, और कंपनी सिर्फ 2 महीने में डिसीजन क्यों ले लेती है सही या गलत। इस वजह से मैं डीमोरलाइज्ड फील करता हूं और चीजें सेटल नहीं हो पा रही।
4: नहीं, इसमें तो हमें अपने कर्म के ऊपर ही अटेंशन देना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी हमारे साथ अगर अच्छा नहीं हो रहा तो ये तो फिर कुछ पीछे का है जिसके कारण ये अटक पड़ रही है। माना अनजाने में ना हमारे से बहुत भूले हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता। ये समझना जरूरी है कर्म कैसे हो रहा है। अगर कहीं पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है जो सबके अंदर है, उसके कारण हमारे से कुछ विकर्म होते जा रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा। वो बीज हैं, वो किसी न किसी रूप में लौट करके आते हैं। लेकिन आज आपको लगता है आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप में कोई ग्रीड नहीं है, आप बहुत अच्छे से एथिकली होकर के कर रहे हैं, तो इस बीज का रिजल्ट तो आना ही है। प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, आउटकम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए।
3: सही बात है। हाँ,
4: आउटकम ने तो आना ही है, पर अभी क्या होता है, हम मेहनत कम करते हैं पर वो फल,
3: फल वो चाहिए,
4: वो चाहिए, वो चाहिए। पर ये तो हमारी पूरी गीता का सार ही ये है ना। देखो, ये जो अभी भगवान भी कहता है, महापुरुष भी कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फील किया कि अगर कर्म करते करते कोई फल की इच्छा करता है तो बेचैन होता है, उसको खुशी अनुभव नहीं होती, उसको उसका सुख नहीं मिलता। लेकिन वहां पर कोई बहुत शिद्दत से कर्म करता है और फिर कहते हैं बीज बोया तो उसका फल निकल नहीं है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत ही खुशी से कर्म करना चाहिए और अंदर में फेथ होना चाहिए कि इस कर्म का फल आज नहीं तो कल आना ही है।
3: बहुत बढ़िया।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मूवीज से हम कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जरूरी तो है, लेकिन क्या है कि हम जिस देश में है ना, हम बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं, बड़े होते हैं, सीख जाते हैं। जब आप ये कह रही थी, मुझे याद है कि आई थिंक 1980s में एक फिल्म आई थी शक्ति बोल के, आई थिंक दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन पहली बार स्क्रीन में आए थे, और उसमें दिलीप साहब जो है वो अमिताभ बच्चन के बाप होते हैं और वो पुलिस अफसर होते हैं, और जो बच्चन साहब है वो गलत रास्ते पर निकल आते हैं, और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे दिलीप साहब ही कहते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करो, मेरा बेटा है, डजंट मैटर। और उस पर बच्चन साहब बहुत नाराज होते हैं कि यार मेरे बाप हैं फिर भी मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से कहानी लिखी गई है, जिस तरह से इमोशनल मैनिपुलेशन फिल्म हमको करती है, हमको बच्चन साहब के किरदार के लिए ज्यादा फील होता है,
1: कंपैशन
3: होता है कि देखो यार इनके बाप गलत हैं, तो बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन अ एनवायरमेंट जहां बड़े ही होते हैं ये फील करते हुए कि ये गलत कर रहे हैं लेकिन ये सही है, क्योंकि यही हीरो हैं फिल्म के और इनके साथ बुरा हो रहा है, हाउ डू यू चेंज दिस परसेप्शन?
1: इसलिए फिल्म को क्राइटेरिया नहीं बनाना होता ना, राइट रॉन्ग के लिए
3: कहीं तो मार्गदर्शन।
1: नहीं नहीं, इसीलिए सी दैट इज व्हाई देयर सो मच रिस्पांसिबिलिटी इवन ऑन द पीपल हु आर मेकिंग फिल्म। क्योंकि देखो एक समय ऐसा होता था, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, एक समय फिल्म्स सोशली करेक्ट हाँ बहुत जरूरी होता था। आप कभी भी नहीं कह सकते कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, क्योंकि पड़ता है, पर तो भी पहले क्या होता था कि जो गलत कर रहा है वो विलन कर रहा होता था, तो आप बाहर निकल करके आते थे, आपको विलन के प्रति थोड़ा सा डिस्गस्ट होता था। हीरो हमेशा पोर्ट्रे किया जाता था जो राइट कर रहा है, एंड द होल फिल्म वुड एंड कि देखो हमेशा सत्य की जीत होती है गलत के ऊपर। नाउ ग्रेजुअली ऐसे भी फिल्म आने लगी हैं जहाँ पर गलत ही हीरो कर रहा है, हीरो ही वायलेंट है, हीरो ही इतना एडिक्शंस के प्रति है, तो वो चीज़ राइट नहीं है ना। इसलिए आप अपनी फिल्म्स को वो चीज़ नहीं बनाए ये देखने के लिए कि राइट क्या, हीरो ने किया तो वो राइट है, हीरो ने किया तो वो राइट नहीं है। कोई वायलेंस राइट नहीं है, एडिक्शंस राइट नहीं है, इमोशनली मैन्युपुलेट करना राइट नहीं है, इसीलिए सत्संग करना जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर, एक सवाल आया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। क्या करना चाहिए?
4: क्लास 11 के स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को फॉर्मूला के हिसाब से समझाते हैं।
3: हाँ, जरूर।
4: स्ट्रेस साइंस से आता है, फिजिक्स का अक्षर है
3: जी।
4: और स्ट्रेस को क्या कहते हैं? प्रेशर अपॉन
3: एरिया। बिल्कुल।
4: तो प्रेशर उनके लिए है पढ़ाई, प्रेशर उनके लिए है कंपटीशन, प्रेशर उनके लिए है डेडलाइन, लेकिन एरिया है उनके अंदर की आंतरिक शक्ति। तो अगर वो अपनी इनर पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इन चीजों का प्रेशर पड़ने लगता है। आप कहेंगे इतना कंपटीशन है, मेरा कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा। अब उनका मन इस तरह से सोच रहा है, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने जीवन में 11th स्टैंडर्ड में है, थोड़ा सा अगर कुछ अपने जीवन में अच्छा सुनना शुरू करें, थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करें, जल्दी उठें, एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग में एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, रात को थोड़ा सा जर्नलिंग करें, कुछ एक अच्छी हॉबी में अपना समय बिताएं, तो ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस क्या है? गलत सोच ही तो रहे हैं ना। तो मन को अगर थोड़ी श्रेष्ठ दिशा देंगे तो मन अच्छा सोचना शुरू कर देगा।
3: और क्लास 11 में अगर आपने फिक्स कर लिया तो आगे की जिंदगी बहुत आसान।
4: क्लास 11 तो फिर भी लेट हो गया है।
3: हाँ,
4: सच में।
3: अच्छा।
4: क्लास 11 भी लेट है। जितनी जल्दी कुछ एक चीजें जो हम हमेशा कहते हैं, एक तो बच्चों के अंदर एफर्मेशन प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए। एफर्मेशन क्या है? आप बच्चे को राइट सोचना सिखा रहे। कोई सिखाता नहीं है ना, तो बच्चा यही सोचता जाता है मैं कैसे करूंगा। लेकिन अगर उसको आपने ये समझा दिया, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल बी सक्सेसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, गॉड इज माई कंपेनियन, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, आई एम फियरलेस, आई कैन डू इट, तो वो उसकी क्या बन जाती है, जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो उसका चिंतन बन जाता है।
3: बहुत बढ़िया।
4: और वो चीज उसकी स्थिति को श्रेष्ठ बनाती जाती है, एंड दैट्स व्हेन ही इज एबल टू डू समथिंग, उसमें सफल हो पाता है वो। नहीं तो कई बार बहुत टैलेंटेड बच्चे जिनके पास टैलेंट है, जो होशियार भी हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो नर्वस होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पाते।
3: सही बात है।
4: और कई बच्चे एवरेज होते हैं।
3: हाँ, लेकिन क्योंकि वो आराम से रहते हैं, वो
4: सफल हो जाते हैं। वो सफल हो जाते हैं उस चीज के अंदर।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my beautiful people. Good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स, और लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, जो कि तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के आंटीज या अंकल्स भी तुम्हें नहीं दे सकते. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी मॉर्निंग फील होती है थोड़ी सी कन्फ्यूज, या फिर जैसे GPS लगाकर भी भटक रहे हो, तो तुम परफेक्ट जगह पर आए हो, बिकॉज यू आर चिलिंग विथ मी ऑन मिर्ची, जहां पर हम ढेर सारी बातें करते हैं, और चाय, ब्रेकफास्ट, कॉफी एंड ढेर सारी गपशप करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड की खबरें जानते हैं. मैं तुम्हें अप टू डेट रखती हूँ और साथ साथ में तुम्हें मिर्चीदार बैंगर्स भी सुनाती हूँ. इससे अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की और क्या हो सकती है. तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर चिपक कर बैठो, जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर और एक्स पर फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना। शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब हम चलने वाले हैं थोड़ी सी जर्नी पर। जर्नी बोले तो टाइम ट्रैवलिंग की होगी। हम सालों पहले पता करेंगे आज के दिन क्या हुआ था। सबसे पहले 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन सल्तन मेहमद द सेकंड, बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट पावर शिफ्ट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। देन 1660 में किंग चार्ल्स द सेकंड marched back to London and said, surprise, मैं वापस आ गया हूँ। Fast forward to 1953, absolute goosebumps moment. Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay became the first humans to conquer Mount Everest. 1968 में India's wrestling legend Dara Singh Ji won the World Wrestling Championship in Mumbai. And this happened way back, WWE became cool in India. Then 1972 में the Dalit Panthers were founded in Mumbai, raising their voices against caste discrimination and inequality. And 1999 में Space Shuttle Discovery docked with the International Space Station for the very first time. Also, आज का दिन है the International Day of UN Peacekeepers. Big love and respect to people serving worldwide. और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे याद दिला दो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चालू है मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। आने वाले हैं मिर्ची दैट बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Okay, stop scrolling for 2 seconds and listen to this. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए बॉलीवुड का टी.
2: मिर्ची वॉच इट.
1: फिल्म मेकर करण जौहर इज ऑफिशियली अनफॉलोड बेसिकली everybody from Bollywood celebrities on Instagram. Yes, even SRK, Kajol, Alia Bhatt, Kareena Kapoor, everyone. Lekin plot twist ye hai, he still follows PC. Bole to Priyanka Chopra. Hanji. Sirf aur sirf Priyanka ne survive kiya hai is unfollow ki tsunami mein. Honestly, mujhe lagta hai mere relatives ko bhi main itna aggressively filter nahi karti hu jitna ki करण जौहर ने कर दिया. नाउ ऑब्वियसली द इंटरनेट बिकेम एसीपी प्रद्युमन फ्रॉम सीआईडी ओवरनाइट और पूछा, दया कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ऐसा क्या हो गया है. लेकिन करण जौहर ने क्लियर किया है द एयर फूफू करते हुए और कहा है, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ डिजिटल डिटॉक्स. ही सेड ही इज अनफॉलोइंग एवरीवन टू रिड्यूस टाइम एंड एनर्जी स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड ऑनेस्टली ये काम मुझे भी करना है, लेकिन मुझसे कोई पूछने नहीं वाला कि तुमने क्यों किया है. anyway, तुम पूछ सकते हो, जाकर तुम मुझे फॉलो जरूर कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चिपक के बैठो, यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज का मौसम बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब हम पता करेंगे बाहर के मौसम का हालचाल, अंदर का मौसम तो मिर्चीदार ही है। राइट नाउ इट्स अराउंड 53 डिग्रीज फारेनहाइट एंड आउटसाइड स्काई इज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फीलिंग क्लोजर टू 49 डिग्रीज फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि आज बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स। अगले 24 आवर्स में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है, तो आज के दिन अपने बालों को जिस तरह की मर्जी बनाना चाहो बनाकर बाहर जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नाउ द टेम्परेचर्स टूडे आर रेंजिंग फ्रॉम 52 डिग्रीज फारेनहाइट टू 77 डिग्रीज फारेनहाइट। तो सुबह सुबह यू विल लीव होम ड्रेस लाइक हुडी की तुम्हें जरूरत है, आफ्टरनून आते आते तुम्हें लगेगा यू लैंडेड इन मायामी, एंड इवनिंग आते आते तुम्हें फिर से गजल और शॉल की जरूरत पड़ने वाली है। एंड द फनी पार्ट टुडे इज कि आज का हाई इज एग्जैक्टली यस्टरडेज हाई, यानी कि 77 अगेन। कल भी इतना ही तापमान था, तो अब अगर बाहर जा रहे हो तो एक लाइट जैकेट कैरी करना, अम्ब्रेला कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन याद से SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बिल्कुल मत भूलना, और मिर्ची ऑन रखना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi people. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो Mirchi Mornings. अब बारी आ चुकी है. सबसे पहले एक वायरल वीडियो शोज इंडियन टूरिस्ट डूइंग गरबा नियर एन एयरक्राफ्ट ऑन द वियतनाम एयरपोर्ट टॉमैक. हाँ जी, रनवे पर रास गरबा. नाउ द इंटरनेट इज डिवाइडेड. सम पीपल कॉल्ड इट जॉयफुल एंड फन, व्हाइल अदर्स सेड गाइस टाइम एंड प्लेस भी कोई चीज होती है. एंड ऑनेस्टली फेयर पॉइंट. नंबर टू पर बॉलीवुड बॉयज आर हैविंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट मीटिंग. रिपोर्ट से सलमान खान पर्सनली कॉल्ड रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर टू सॉर्ट आउट द डॉन 3 सिचुएशन आफ्टर रूमर्स अराउंड रणवीर्स एग्जिट. सलमान अपेरेंटली टोल्ड देम क्रिएटिव डिफरेंसेस हैपन ऑल द टाइम. बेसिकली सलमान खान इज प्लेइंग मोदी जी. एंड नंबर थ्री पर क्रिकेट फैंस के लिए 15 ईयर ओल्ड आरआर ओपनर वैभव सूर्यवंशी रिएक्टेड आफ्टर सचिन तेंदुलकर प्रेज्ड हिज एक्सप्लोसिव 97 ऑफ जस्ट 29 बॉल्स इन आईपीएल एलिमिनेटर. वैभव सेड हियरिंग प्रेजेस फ्रॉम द गॉड ऑफ क्रिकेट फेल्ट लाइक अ ह्यूज मैटर ऑफ प्राइड. एंड ऑनेस्टली एट 15 आई वॉज स्ट्रगलिंग टू ओपन मैथ टेक्स्ट बुक. And this kid is opening bowling attacks. Incredible. Hashtag salute. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect with me Insta or X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647224. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे रहे वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। अच्छा। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा।
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात सुन पहले।
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

थ्री मॉर्निंग्स पर बर्थडे सेलिब्रेशन, वी आर गोइंग टू बी लाउड. लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. May 29 के बेबीज, आज का दिन इज क्लियरली एलीट बिकॉज यू शेयर योर बर्थडे विद सम रियली आइकॉनिक पीपल लाइक फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, एंड देन देर इज किंग चार्ल्स द सेकेंड फ्रॉम इंग्लैंड. And adventure lovers, legendary mountaineer Tenzing Norgay was also born today. The man helped conquer Mount Everest. And आज के दिन अगर तुम न्यूयॉर्क का सबवे सर्वाइव कर लो तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, राइट? And then we have musician Noel Gallagher, Mel B from the Spice Girls, and genius film composer Danny Elfman. And then we have actors Annette Bening and Laverne Cox. Along with NBA superstar Carmelo Anthony, athletes, artists, leaders, सब कोई है आज के दिन. तो आज के दिन अगर तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे, there is a higher chance you're dramatic, talented and occasionally a little bit impossible. So अगर आज के दिन तुम्हारा happy वाला birthday है, please walk with the confidence of a star. आज के दिन calories count नहीं होती. Cake खाओ, ऐश करो, मजे करो और अपना birthday खोल के celebrate करो. और अगर मैं birthday shoutouts मुझे भेजना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस is my handle name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और अगर गोल्ड या सिल्वर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो राइट टाइम पर ट्यून इन किया है, बिकॉज वीव गॉट गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,530, $4,530 बट रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और पिछले साल आज ही के दिन अराउंड $3,300 गोल्ड ट्रेड कर रहा था। एप्रिसिएशन आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स के साथ कनेक्ट करें। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल कलरलेस डायमंड प्लैटिनम की रिंग में सेट, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज अप्रूव होने पे राज ज्वेल्स की फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाए और 9 किस्तों में पैसे दे बिना किसी इंटरेस्ट के। कैसे, आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
2: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, good morning, my lovelies. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची Mornings का वो टाइम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. सबसे पहले स्पेस न्यूज. समथिंग जस्ट वेंट बूम. लिटरली जेफ बेजोस ओन्ड ब्लू ओरिजिन्स न्यू ग्लेन रॉकेट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग अ टेस्ट इन फ्लोरिडास केप कनावरल, क्रिएटिंग अ जायंट मशरूम क्लाउड विजिबल फ्रॉम ओवर 74 किलोमीटर्स अवे. इवन इलॉन मस्क रिएक्टेड सेइंग मोस्ट अनफॉर्चुनेट, रॉकेट्स आर हार्ड. एंड ऑनेस्टली दैट्स प्रोबेबली द कामेस्ट बिलियनेयर रिस्पॉन्स एवर टू समथिंग एक्सप्लोडिंग सो ड्रामेटिकली. And number two per the internet is remembering Harambee, the gorilla who died in 2016 after a child fell into his enclosure at a US zoo. On the 10th anniversary, the White House shared a tribute calling him bigger than a meme. And wow, only the internet can turn a gorilla into both emotional history and pop culture legend at the same time. And number three per Marvel fans, hold your spider webs tight. Tom Holland hinted that he may eventually step away from playing Spider-Man. He said he hopes to guide the next generation the way Robert Downey Jr. helped him, which honestly sounds pretty sweet. But also, sir, some of us are emotionally attached to the version of Spider-Man, okay? And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur saath mein follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name. MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello, उसको वहां से मत उठाओ यार. Hello.
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से. मत करो उसको वहां से. हेलो हेलो भाई साहब.
1: हाँ जी बोलो.
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
1: हाँ जी देते.
2: एक सेकंड होल्ड करना. उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे. मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार. ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
1: कहाँ भिजवाना है?
2: तो मैं आपको
1: बता दो.
2: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम.
2: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार. ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे. तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए. तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
1: पूरा
2: सेंसेक्स सेंसेक्स. तो आप ऐसे उठाना है इसको,
1: सामान
2: उठवा.
1: क्या कर रहा
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार. आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ. सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है.
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है. हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं. मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं. आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो,
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings का वो पार्ट जहाँ पर हम सितारों की बातें करते हैं.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी मेष राशि. Something from the past suddenly makes you realize you've been stressing for no reason. मतलब फुल इतना टेंशन क्यों लिया मोमेंट होने वाला है तुम्हारे साथ. लकी कलर इज टैंजरीन ऑरेंज. लकी नंबर इज 11. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. अ लिटिल सीक्रेट में एक्सीडेंटली बिकम पब्लिक टुडे. But relax, nobody is judging you. Honestly, Desi families have suffered worse things than awkward gossips. Lucky color is pistachio green. Lucky number is 24. Gemini yani Mithun Rashi, a situation you've been avoiding is finally demanding attention. Face it bravely, because once you handle it, mental peace incoming. Like deleting 8,000 unread emails. Lucky color is electric blue. Lucky number is 5. Cancer yani Kark Rashi, you've been doing too much for everyone else lately. आज थोड़ा सा खुद पर भी अटेंशन दे दो. ओके, यू आर नॉट अ 24 आवर कस्टमर सर्विस हॉटलाइन. लकी कलर इज ऑफ वाइट. लकी नंबर इज 18. लियो यानी कि सिंह राशि, फन वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे, बट डोंट इग्नोर वन सीरियस इशू वेटिंग इन द कॉर्नर लाइक लेफ्ट ओवर गिल्ट फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग. Handle it and then party. Lucky color is gold dust. Lucky number is 1. Virgo yani Kanya Rashi, stop doom scrolling world problems for 1 second and focus on what genuinely excites you. Protect your peace today like Desi's protect Tupperware dabbas. Lucky color is lavender gray. Lucky number is 29. And that's your Rashi Zone part 1. पार्ट टू लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर भी हम साथ में हो सकते हैं. फॉलो मी देयर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना,
1: हिट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहाँ मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी, तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
3: समाचार
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात से
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो
3: नहीं नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

ये लेट 40s की बात है, जब एक बार लता मंगेशकर जी एक स्टूडियो जा रही थी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लता जी ने लोकल ट्रेन ली, उन्होंने देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया, वो टांगा उनके टांगा के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था, जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आई, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ। सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं। क्योंकि देखो भैया, हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब, वो अपने भाई इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनली बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा और मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपके मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, कि आप अमेरिका आ जाओ। तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाकर बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

वही सिंगर शब्बीर कुमार को जब लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला तो शब्बीर कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहां पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा। वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय, कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चितचोर, इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: हेलो मिस्टर गौतम,
2: कौन बोल रहे हैं
3: सर? मैं एक्चुअली आपसे रहे वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है आपसे वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने गा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन का सर नगीना फिल्म देखिए, नगीना फिल्म देखिए सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाइए।
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात पहले।
3: हाँ सर,
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Morga, na vid kesat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, I got.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगर आपने लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे, अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, ओ यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। व्हाट कॉमेडी, प्लीज डू वॉच। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: आपको पता है एक्ट्रेस नूतन को उनकी मदर जो खुद एक एक्ट्रेस फिल्म मेकर थी शोभना समर्थ जी, उन्होंने अर्ली 50s में जब नूतन जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ही कर रही थी, उनको एक साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस, वो निखार आ जाए। उनकी यंगर सिस्टर तनुजा जी को भी स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन फिनिशिंग स्कूल में नहीं। इनफैक्ट एक्ट्रेस बनने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई वेंट टू रेगुलर इंग्लिश स्कूल क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था और मुझे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाना था। सो दे थॉट दैट इफ आई वेंट टू अ स्कूल इन स्विट्जरलैंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, आई वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू माई लैंग्वेजेस एंड गो इनटू द डिप्लोमेटिक फील्ड एंड आई वाज गोइंग टू कम बैक एंड डू माई IFS एटसेट्रा एटसेट्रा। डिड नॉट हैपन। And I came back because we had a financial crisis in the family and the only profession that I could think of doing and which my mother thought would be easy for me to do was this and we needed the money so.
0: भाई एज अ चाइल्ड एक्टर तो तनुजा जी ने एक दो फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत एज मेन लीड हुई थी 1961 में विद अ फिल्म कॉल्ड हमारी याद आएगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे सुनिए। एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो अरेस्ट कर सकेंगे। मैं कहा नकली सांप से तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूरब और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, और उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी और उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा,
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

ओए होए होए होए, लव इश्क प्यार मोहब्बत मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ज किया है गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। एक और सुनिए, जिगर मुरादाबादी कहते हैं, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, अदना छोटा सा, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: I'm genuinely keeping my fingers crossed for this one.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून डन हो आप, और अगर आपकी यादें किसी चीज को लेकर एक स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई है, इनफैक्ट वो बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं, और उस चीज को लेकर कुछ नया किया जाए तो आपको दिमाग में रहता है ना कि यार बस मेरी उन यादों के साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब जो नॉस्टैल्जिया है उसको मेरे लिए खराब मत करना. चलो कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइकॉनिक टीवी सीरीज ऑफिस. ऑफिस याद तो होगा आपको, पंकज कपूर स्टार है जिसमें वो मुसद्दी लाल बनते हैं और वो ड्रामा. ओ हो हो हो हो. सो बेसिकली इस सीरीज का सीजन 2 आ रहा है. यस यू हर्ड इट राइट. जिसमें लीड रोल निभाने वाली हैं रिनाउंड टीवी स्टार श्रुति शर्मा. अब चलिए इनके पहले के काम भी आपको याद दिला दूं. गठबंधन, नजर 2, नमक इश्क का, मिट्टी, इनफैक्ट हीरा मंडी में भी नजर आई है मोहतरमा. तो ये ऑफिस ऑफिस का सीजन 2 आने की वजह से हम टीवी बफ्स के लिए, इनफैक्ट 90s किड्स के लिए एक वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया तो है, बट साथ में एक डर भी है कि हमारे उस नॉस्टैल्जिया को खराब ना किया जाए विद दिस न्यू वर्जन. एंड दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. Na vjetva la murga.
1: Milci, murga. Hello.
2: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Aap hold karna ek second, bhai sahab. Isko vahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega vahan se. Mat karo usko vahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
1: पूरा
2: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा
2: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ जून इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई जिंदगी ने तो बहुत गेम खेल लिए, अब थोड़ा आप मेरे साथ गेम खेलिए यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं हर रोज ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्मची। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट के जरिए मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालना चाहती हूँ। तो करना कुछ खास नहीं है, आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति पे जाना है, मेरे DMs में स्लाइड करके अपना फोन नंबर मुझे भेजना है और फिर मैं आपको करूंगी कॉल और आपके साथ खेलूंगी ये बॉलीवुड गेम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पे?
3: अनुष्का।
0: हाय अनुष्का, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक और बढ़िया हो जाऊंगी इफ यू विल प्ले दिस गेम विद मी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके सो लेट्स बिगिन। बॉलीवुड का खिलाड़ी किसको बोलते हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो
3: चोरी करते हैं।
0: हाँ चोरी करते हैं।
3: 30 मार खान।
0: 30 मार खान की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: कैटरीना कैफ
0: की पहली फिल्म। सोचो।
3: बूम बूम बूम।
0: क्या बात है, ये कहीं से किसी ने प्रॉम्प्ट किया है क्या आपको? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। बूम के मेल लीड एक्टर का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: क्या बात है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो अपने बेटे के साथ नजर आए थे।
3: बंटी और बबली
0: में लीड एक्ट्रेस कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: नहीं, बट आपने इतना जो गेम खेला है मेरे साथ उसके मद्देनजर मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अनुष्का ने ये गेम जहाँ छोड़ा है उसके आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइक आई सेड मेरे

0: यार लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माय इंस्टाग्राम, और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। सो अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ होता है।
0: ऑसम। कुछ कुछ होता है कि लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण।
3: डर।
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज? अच्छा
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.

0: Size doesn't matter, Babu Moshai.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लीजिए. आप जहाँ जा रहे हैं उसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही. मैं तो एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फिल्म्स जिसमें साइज मैटर नहीं करता. मतलब 2-2.5 घंटे की फिल्म देख के भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको एक 20-25 मिनट की मूवी देख के आ सकता है मजा. सो बस आज का 5 का 5 की लिस्ट कुछ ऐसी ही फिल्मों को डेडिकेटेड है जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी अनुकूल. नंबर 2 पे अब बात करना चाहूंगी फिल्म दोबारा अलविदा के बारे में. सो इस मूवी को भी आप YouTube पे देख सकते हैं. एंड ये कहानी है 2 एक्स लवर्स की जो एक लेट नाइट कैब राइड में वापस से टकरा जाते हैं, यू नो, राइड शेयरिंग ऐप की वजह से. और फिर उस पूरे जर्नी में ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं फॉर द पास्ट दैट दे हैव शेयर्ड. फिल्म में बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं, हार्ट ब्रेक, क्लोजर, अनरिजॉल्वड इमोशंस एंड व्हाट नॉट. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आई गेस आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए. चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म द अदर वे, जिसको आप YouTube पे देख सकते हैं. वेल, ये मूवी एक ब्राइड टू बी रेवा की कहानी एक्सप्लोर करती है जो शादी को लेकर काफी ज्यादा डाउटफुल है. फिल्म में उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके फियर्स और उसकी जिंदगी में आने वाले बदलाव को लेके बहुत सारी बातें हैं. ऑल इन ऑल रेवा की जो जर्नी है वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती है. सो इफ यू आर अ गर्ल एंड शादी को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं तो ये फिल्म जरूर देखना. बाकी लिस्ट में और भी 2 ऐसी ही शॉर्ट फिल्मों की बातें बाकी हैं. बाबू मोशाय, ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि वो सारी बातें वापस यहाँ पे होंगी. मैं हूँ श्रुति एंड इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई कम टाइम में भी ज्यादा मजा मिल सकता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय, स्पेसिफिकली वो फिल्में जिनका साइज काफी छोटा है लेकिन वो एंटरटेनमेंट भरपूर दे रही हैं। सो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अनुकूल, नंबर दो पे हमने बात किया दोबारा अलविदा के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड द अदर वे, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म कतरन जो 14 मिनट की कहानी है और आप इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। कहानी एक एल्डरली कपल की है प्लेड बाय पीयूष मिश्रा एंड अलका अमिन, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत सारी इनकम्पैटिबिलिटी फेस कर रहे हो।

सकते हैं। इन शॉर्ट, ये फिल्म रिलेशनशिप के ट्रेजिक टॉक्सिसिटी को एक्सप्लोर करती है। अ डेफिनेट वॉच, आई मस्ट से। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बातें, जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू आर इन। फिल्म में किस तरीके से कुछ दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन ग्रेजुअली उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को, उनके लोनलीनेस, उनके इमोशनल वल्नरेबिलिटी को सामने लेकर आती है, इज रियली ब्यूटिफुल। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज ये फिल्म जरूर देखना। बाकी मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही शॉर्ट फिल्में ऐड करना चाहो, देन कनेक्ट करके बताओ ना मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या फिर इंस्टा पे। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंट्स हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहा है?
2: सर मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकते हो जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने
2: है? सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: सर साहब
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
1: सुन ले बात, और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ना बंद कर
2: सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है, और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भरी

और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसन बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है। और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, it's hot.

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो hips lips eyes thighs सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: होगा। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, कुछ भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

और अगर सफर के लिए निकले हो, स्पेशली रोड ट्रिप्स, तो ये चार टाइप के लोग आपको जरूर मिलेंगे। एक होंगे वो जो हमेशा ड्राइव ही करेंगे, अब इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं कि हर बार इनको ही ड्राइवर बनना पड़ता है। दूसरे होते हैं शॉटगन, जो कार के ऑफिशियल डीजे होते हैं। तीसरे होते हैं वो जो यहाँ वहाँ इधर उधर के गॉसिप्स बताते, सबका मनोरंजन करते। और चौथे होते हैं ट्रिप के अन्नदाता। जी हाँ, हर तरह के स्नैक्स लेकर आएंगे और सबके खाने का ख्याल रखेंगे। तो अगर आपकी ट्रिप में भी ये है तो उन्हें ज़रूर बताइए दीप स्नैक्स के बारे में। चाहे बनाना चिप्स हो, पॉपकॉर्न हो या गुजराती स्नैक्स, दीप स्नैक्स होता है हर ट्रिप का साथी। तो आप भी अपनी रोड ट्रिप के लिए दीप स्नैक्स पैक कर लीजिए। गेट दीप स्नैक्स फ्रॉम योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। और ट्रिप पे गाने बजाने हो तो मिर्ची है ना, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही, लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे, और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था, और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे, मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था, और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

लाल रंग वाली आंखों वालों को झंडी हरी ना दिखाओ, शैतान सिर के हम परी ना दिखाओ, ये आग ऐसी है इस सावन की झड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आजकल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
1: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान
2: उठवा
1: क्या मजाक कर रहा है
2: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फैशनेबल फ्राइडे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए शाम तो ढल रही है और जितनी ज्यादा मतलब अभी मई ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और जून शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा गोल्डन आर भी शुरू हो चुका है विथ नन अदर देन आर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का फैशनेबल फ्राइडे के गोल्ड डीकोडर सीरीज में, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी। नमस्ते बॉबी जी एंड वेलकम टू टुडेज शो।
1: हैप्पी फैशनेबल फ्राइडे टू यू सिद्धि जी एंड दोस्तों, आप सबको भी ब्यूटीफुल वार्म इवनिंग। सिद्धि जी, फर्स्ट टू स्टार्ट विद द गोल्ड प्राइस ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली राज ज्वेल्स की टीम के साथ इन्वेस्ट करें। सिद्धि जी, आप तो रोज अवेयर रहती हैं गोल्ड के प्राइस के साथ,
0: बिल्कुल
1: तो मैं आपके क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ।
0: देखिए बॉबी जी, कल परसों की ही बात है जब थोड़ा सा गोल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में गया था, और जैसे जैसे वीकेंड आना शुरू होता है मुझे तो लगता है शायद खबर फैल जाती है कि अब लोग शॉपिंग करना शुरू करने वाले हैं, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन प्रेजेंट्स के लिए हो, वेडिंग सीजन के लिए हो, या फिर अपनी एनिवर्सरीज। आप अगर नोटिस करोगे बहुत सारे एनिवर्सरीज मई और जून में आते हैं, इसी टाइम पे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो शायद खबर फैल जाती है और इसलिए थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पे आज गोल्ड है, राइट?
1: इसलिए बोलते हैं, कोई प्यारा सा गाना है, धीरे धीरे बोल कोई सुनता भी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम तो रोज इतना, मैं और सिद्धि जी दोस्तों के साथ रोज शेयर करते आए हैं, गोल्ड $4,400 का लेवल टच कर, $4,370 का लेवल टच करके वहां पे 4,540 पर ट्राई अउंस आ गया है। सिद्धि जी, जैसे गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड लेता है, देखिए मेमोरेबल मोमेंट्स, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, प्रपोजल रिंग हो, ग्रेजुएशन पार्टी हो, या आने वाली एंगेजमेंट के लिए आप खूबसूरत सा नेकलेस देख रहे हो, तो गोल्ड का प्राइस जो है डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आप अपने डॉलर्स में एक बजट बना के चलते हैं कि अगर मुझे सपोज करिए $5,000 में गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो अगर गोल्ड का प्राइस $130 पर ग्राम ट्रेड कर रहा था 3 दिन पहले और आज $134 हो गया है 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस, सो आपके हिस्से में उतने ही डॉलर्स में कम सोना आएगा। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड पर है। अगर पिछले साल से आज के सोने के भाव की कंपैरिजन की जाए तो $3,300 पर ट्राई अउंस आज के दिन गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी परसेंटेज अप्रिसिएशन हुई है। और सिद्धि जी, आपकी वो धीरे धीरे कहीं बात कोई सुन ना ले गोल्ड का प्राइस और बढ़ ना जाए, उससे पहले मैं दोस्तों को इन्वाइट करूंगा राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट, 0% डाउन पेमेंट में आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी आप घर लेके जाए और 9 किश्तों में पैसे दें। कैसे आइए, राज ज्वेल्स आपको रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है एजुकेट करने के लिए तैयार है। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी, और दोस्तों ऐसी ही हमारी बातचीत यहाँ पे हर गोल्डन आवर में जारी रहेगी, तो हर वीक हर दिन आप यहाँ पर इस गोल्डन आवर में आ सकते हो। और आपके भी अगर कोई सवाल है बॉबी जी के लिए तो मुझे जरूर इंस्टा कीजिए @RJMirchiSiddhi, और आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था, कंपोज्ड बाय प्रीतम। 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है, फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं। क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन

अनकंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था, और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पर लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन इंस्टा कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया, या फिर फिंगर टॉप किया, या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आहू आहू राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियाँ महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Kahit Milchi.
1: Iska bala, puska bala, saka bala.
2: Ya bala!
1: Burga, burga. Nabil bala, burga.
2: Milchi, burga!
3: Hello?
4: Hello, Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर, नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
4: वही सर, एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: हाँ. सुन पहले बात सुन.
4: हाँ सर.
3: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है. सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है
4: हाँ.
3: क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है। जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ 1 मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

1 महीना, सिर्फ 1 महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पे बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।